0: क्या कहा ते कोरी
1: तो चुको एफे
2: ना फका थाकी
3: ए को हवाई की काई ते नहीं
2: ते नहीं है फका थाकी में ते काई का फका हांगा या तू ते काई की ना काई माओरी और ते हाउ काइंगा और हवाई की O te rā me ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
3: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
0: Ia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.